0: Extreme Energy Drink.
1: 哎，丸子，阿个盖房都下房都关着呢，你在这等留着，阿底下拉着 computer 给你背下一堆进去。
2: 哦，你买了 computer 才卡进去的？
1: 你在这等丸子？
2: 哪里？阿叔他妈妈？
1: 你在这等丸子
2: ？Fortis Computer Center， 这哈 computer、laptop、printer、UPS 罗个哎 ，computer 什么的全部啥么搬去，我这搬了十多了，几钱去？妈妈，
1: 丸子，这回来你那里等留，底下拉进去 computer 也带进了，阿个。
3: जस्तो खोजे त्यस्तै कम्प्युटर पाइने बिग्रियो भने पनि बनाइदिने त्यसैले अन्त हैन कम्प्युटर चाहिए धादिङदेखि बीच बजारको प्रत्येक कम्प्युटर सेन्टरमा जाने
4: सबै प्रकारका कम्प्युटरको लागि प्रत्येक कम्प्युटर भएपछि सधैँ झुक्क फोन नम्बर 010-5509-97 97510-97778
5: समुदाय का लागि समुदाय को आवाज रेडियो धादिङ 106 मेगाहर्ज

0: रिलायंस फाइनेंस लिमिटेड वित्तीय सेवा को अर्को परिभाषा
1: समुदाय का लागी समुदाय का आवाज रेडियो धादिंग 106 मेगाहर्ट्ज।

0: कहूँ प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इंश्योरेंस के अभिकर्ता बनो।
1: प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड।
2: समुदाय का लागी समुदाय को आवाज रेडियो धादिंग 106 मेगाहर्ट्ज।

0: 2010 जस्ता
1: रिलायंस फाइनेंस लिमिटेड वित्तीय सेवा को अर्को परिभाषा
2: समुदाय का लागी समुदाय को आवाज रेडियो धादिंग 106 मेगाहर्ट्ज।

0: ढुक लैन ढुक हूँ प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इंश्योरेंस के अभिकर्ता बनाओ
1: प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड
2: समुदाय का लागी समुदाय को आवाज रेडियो धादिंग 106 मेगाहर्ट्ज़।

0: वित्तीय संस्था
1: रिलायंस फाइनेंस लिमिटेड वित्तीय सेवा को अर्को परिभाषा
2: समुदाय का लागि समुदायको आवाज रेडियो धादिङ 106 मेगाहर्ज।